0: गुरु पातशाह ने इस पावन पवित्र शब्द अंदर गुरु दी पूजा दसी है। गुरु दी पूजा किवें करनी है, इसे तरह का ख्याल भगत कबीर जी देंदे हुए सानू एक गल समझांदे ने। कहिंदे ने हे मनुख हे इंसान, पूजा किवें करनी है। किसे ने कह दिता तीर्थ स्नान इयो पूजा है। हुण भगत जी इस गल नूं स्पष्ट करदे हुए उपदेश साडे तक पहुंचांदे हुए कहिंदे ने,
1: अंतर मैल जे तीर्थ नावै,
0: अंदर तेरे मैल भरी हुई है, अंदर तेरे गुनाह कठे कीते हुए ने, अंदर तेरे अवगण ही अवगण हन। भगत जी कहते ने जे तू तीर्थ स्नान करन भी चला जाए तू तीर्थ नूं भी गंदा करके रख देवेगा, क्योंकि तेरे अंदर इतना गंद है, तेरे अंदर इतनी मैल है। भगत जी कहते ने वाकई लोगों ने अपनी मैल धो धो के तीर्थ नूं भी गंदियां कर दिता है, मैला कर दिता है। पर इत्थे हुण भगत जी कहते ने तीर्थ केड़ा है ते गुरु की पूजा की है। अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, वो बैकुंठ नूं नहीं जा सकता, ओनू कदी परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता जे तीर्थ स्नान करन गया भी अपने अंदर दी उन्हें मैल नूं नहीं त्याग गया, अवगणा नूं नहीं त्याग गया, गुनाह नहीं त्यागे। कहिंदे ने कोई फायदा नहीं तीर्थ यात्रा जाण दा भी।

सारा दिन न रहन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा कहे कबीर नर्त से त्यावो बावरे आ संसार। हे नर उस मालिक नु त्या, उस मालिक दी पूजा कर, तू ते संसार दी तरह एवी बौरा होया है, पागल शुदाई मेंटल होया होया है, इसलिए आ उस मालिक नु त्या जिस ते त्याउण दे नाल तेरी पूजा सफली हो सकती है। किदे नाल तू पूजा करनी चाहना है? इस मन नाल? साहिब कहिंदे ने भी तेरा नहीं। इस तन नाल? ए भी तेरा नहीं है। इस तन नाल? ए भी तेरा नहीं है। आज इंसान नु मनुख नु हंकार ही इसे गल दा है, कहने तन मेरा, मन मेरा, तन मेरा, हे परमात्मा तेरा की है। ध्यान देना मेरी गल वल, हे परमात्मा तेरा की है। पर इत्थे साहिब कहिंदे ने हे मनुख, हे इंसान, सब कुछ ते है ही परमात्मा दा है, तू किहदे नाल पूजा कर रहे हैं? तेरी पूजा किवें हो सकती है? क्योंकि सब कुछ ते दित्ता परमात्मा दा है। हुण ख्याल करना, जे मनुख नूं तन ना मिलदा ते मन ना हुंदा, जे तन ते मन ना हुंदा तन कदी भी ना हुंदा। परमात्मा ने तन दित्ता है ते असीं तन कमाया है, जे परमात्मा तन ही ना देंदा तन कित्थों हुंदा? इसलिए साहिबां ने बाणी विच एक गल कह दित्ती सी, तन मन तन सब सौंप गुरु। भाई ये गुरु नूं दे दे, जदों ये गुरु नूं दे देवेंगा फिर हुक्म मन्नीए पाईए। जदों गुरु दे हुक्म नूं मन्नेगा फिर तू परमात्मा नूं पा सकना, फिर ओदी पूजा कर सकना, इस तों बिना पूजा नहीं हो सकती। इसलिए ख्याल बड़ा सुंदर है।

बिन गुर चरणा पूजना, बिना गुरु दे चरणा तो पूजा सब कूड़ सुआ। सारे मनोरथ सब झूठ हन कूड़ हन। आरंभता पहले दिन इसे ही गलत हुई सी कि हरी दे नाम तो बिना सब कुछ झूठ है। ते इत्थे भी सतगुरु ने उपदेश यही दिता है। ते भाई साहब भाई गुरदास जी इस गल नूं बड़े ध्यान दे नाल ते बड़े ख्याल नाल साडी चोली पा के कहिंदे ने कि जिहड़ा मनुख अपने गुरु दे चरणा तो बिना किसे होर नूं ध्याउंदा है भाई साहब कुछ झूठ है, सच नहीं है।

हर की पूजा दुर्लभ है संतो, हे संत जनों हरी दी पूजा दुर्लभ, दुर्लभ दा पावे जो लभिया ना लभे। कई बार होंदा है कई चीज लभिया लभ जांदी है पर कहिंदे ने दुर्लभ है, लभिया भी नहीं लभदी। फिर गुरु कृपा कर देखन

हर साचे भावे सौ पूजा होवे। बस उस मालक नू पा दे फिर तेरी पूजा परवान है। पर किस तरह हर

धार अणियर कमंद कोरड़ा, तमक धार अणियर कमंद कोरड़ा, पंज शस्त्र परवान, पंज शस्त्र परवान, पंज शस्त्र परवान, किते शस्त्र नामं नमस्कार दाम, किते अस्त्र

सेवा करे सो चक्र होए। जल थल महियल रावरे असोए बीठल बिन संसार नहीं। दुख दारू सुख रोग पया जा सुख काम न हुई। तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई।

नहीं। जात में जोत जोत में जाता अकल कला पर पूरिया, बीठल बिन संसार नहीं। तुम्हारी कृपा ते बहुमान छूटे बिन

चानन सब में चानन होए, बीठल बिन संसार नहीं। हे मनुख दास्ता सही, उ परमात्मा किथे नहीं, वो परमात्मा किथे नहीं वसदा, दस वो केड़ी जगह है, वो केड़ी थां है, वो केड़ा शहर है, वो केड़ा नगर है जिथे परमात्मा नहीं, वो केड़ा जीव है, वो केड़ा मनुख है, वो केड़ा पंछी है, वो केड़ा पशु है जिदे अंदर परमात्मा दा नूर नहीं। दस तां सही, वो केड़ी जगह है जिथे परमात्मा नहीं रहिंदा, परमात्मा ते हर जगह है।

0: ये सारा संसार परमात्मा तो बिना नहीं। जले हरी थले हरी बीठल बिन संसार नहीं, जले हरी थले हरी उरे हरी, बने हरी बीठल बिन संसार नहीं। कोई भी ऐसी जगह नहीं जिथे परमात्मा नहीं रही। इंसान ए ते तू ही कह कि परमात्मा सिर्फ गुरुद्वारे ही रहिंदा है, होर किते नहीं। कि तेरे घर विच परमात्मा नहीं उत्थे भी है, ये ते असी आप ही परमात्मा नूं बाहर कर दिता है। परमात्मा ते हर जगह रहिंदा है, तेरे हिरदे विच भी परमात्मा है, पर जाने या नहीं। इस स्थान ते असी आउने अपने आप नूं बड़ा पवित्र कर, कहने कि गुरुद्वारे चले हैं पवित्र होके जाइए, क्योंकि वह बड़ी पवित्र जगह है। ते पवित्र जगह बह के मन लगता है। इंसान इस जगह नूं जे पवित्र समझना है कि अपना घर तो पवित्र नहीं बना सकता। जे अपने घर नूं तो पवित्र बना लवे तो उत्थे भी हरी रहिंदा है, उत्थे भी परमात्मा दा निवास है। कि उत्थे परमात्मा नहीं रहिंदा, उत्थे भी परमात्मा। मैनूं एक गल याद आ गई, किसी ग्रह विखे दस गया बचन हुंदे आ, गल अगां वधी। एक माता जी कहने लगे कि साडे घर एक महापुरुष सन, खुशी विच आए, आके उन्हां मैनूं दो गिलास फड़ा दिते। गिलास मेरे हथ विच आए ते मैं पुछ कीती, महापुरशो इन्हां गिलासां नूं मैं की करां? उन्हां महापुरशां कहा, बीबी ए मैं तेनूं गिलास दिता है, ये गिलास हुण तेरे पास आ गए ने, ये हुण तेरी मर्जी, इन्हां दे विच तू मिठा पा, तू कौड़ी वस्तु पा, ये तेरी मर्जी। भाव कि वह परमात्मा का असूल है। उस परमात्मा ने सानू संसार ते भेजे, ये मनुखा दे बख्शी, मनुखा दे एक गिलास है। यह साडा मन है, इस गिलास अंदर चंगी वस्तु पाईए माड़ी वस्तु पाई, ये असी पाने। जो कुछ भी कर रहे हैं ये असी एहो जिहे कर्म कर रहे हैं, परमात्मा तो नहीं कहिंदा। इसे तरह नामदेव जी उपदेश देंदे ने, कहिंदे ने जीव इबै बीठल उबै बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। कि तू कह दिता है गुरुद्वारे रब रहिंदा है, होर किते जी? गुरुद्वारे तो तेरे अंदर भी, उते घर तेरे वसदा है, पर तू जानिया ही नहीं। जान क्योंकि इंसान बाहर वेखदा है, अंदर नहीं चाती मारदा। जदों अंदर चाती मारेगा गल उदों ही बनेगी। हे इंसान, जे गुरुद्वारे नूं पवित्र करके समझना, अपने घर नूं भी पवित्र बना ले, उन्हूं भी पवित्र करके जान लै, परमात्मा उत्थे भी तेनूं प्राप्त हो जाएगा। सानू बाणी अंदर उपदेश मिलदा है, आओ अरदास करिए कि पातशाह करो कृपा, सानू इस बाणी ते चलण दा बल उद्दम बख्शो। भाई साहब ने आख दिता है घर घर अंदर धर्मशाल, गुरसिख का घर जिहड़ा ना धर्मशाल है, घर नहीं। पर असी धर्मशाल केवल गुरुद्वारे नहीं समझ छड़े, आओ घर नूं भी धर्मशाल बना लई। जदों घर धर्मशाल बन गया फिर ओही गल पक्की हो जाएगी, ई बै बीठल ऊ बै बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। कोई भी जगह परमात्मा तो बिना नहीं है, हर जगह परमात्मा रहिंदा है। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, उहां तो जाइए जो इहां ना होए। उथे तां जाइए ना जिथे परमात्मा नहीं। जे परमात्मा घर बैठिया मिल जाए तो बाहर जाने की जरूरत है? फरीदा जंगल जंगल क्या भवे, वन कंडा मोड़े बसे रब हयालिया, जंगल क्या ढूंढे। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। ते साहिब श्री गुरु नानक पातशाह का मिशन सी, जीव बार ना जा, घर बैठे हैं परमात्मा तेनू मिल सकदा, घर बैठे हैं प्रभु नू तू पा सकना है। जोगियां ने कंदरां मलियां, कन्न परवाल है, ਬਬੂਤੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਕਫਨੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਚੁਟਕਾ ਆਟੇ ਦਾ ਦਿਓ, ਜੋਗੀ ਆਏ ਨੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਿਸਤ ਤਜ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ? ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਗ੍ਰਿਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਯੋਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਜੀਵ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ, ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ,
1: ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰਸ ਆਸਾ ਬਰਸੇ ਸਦਨ ਸਭੇ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਏ ਉਦਾਸਾ।
0: ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸੇ।
1: ਇਬੈ ਬੀਠਲ ਉਬੈ ਬੀਠਲ ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਚਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੂਰੇ, ਨਿਕਟ ਵਸੇ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰੇ।
0: ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੋਂ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਏ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ।

राग गौड़ी दीप की विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ग संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

भक्त रविदास जी का उच्चारण किया होया है। इस दे विच भक्त रविदास जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रेज कर रहे हैं कि ओ प्राणा दा नाथ सानू प्राण जीवन जिंदगी देने वाला प्राणा दा नाथ परमात्मा वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ ओ प्यारा प्राणा दा नाथ वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत किस भक्ति दे द्वारा ओ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। यह सवाल उठाया है किस भक्ति दे द्वारा यानी किस मेथड दे द्वारा किस टेक्निक दे द्वारा किस विधि दे द्वारा किस युक्ति दे द्वारा उसनु मिलन दा रंग राह अते ढंग की है। यह सवाल मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते

मैं ते परम गति सब तो उच्ची अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु नु मिलन दी जो है उपाय है, किस तरह साध संगत दे द्वारा। सो साध संगत ही वो टंग है, साध संगत ही वो विधि है, साध संगत ही वो रस्ता है जिसके द्वारा प्राणा दा नाथ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। अगलिया पंक्तियां दे विच भगत गुरदास जी ये दसणगे कि साध संगत उन्होंने किवें कीती।

देहन में परम गति पाले ही सब तो उच्ची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलाप दी पाले ही है। भक्त रविदास जी दस देहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई, बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिए नू इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हन, इस दे नाल इकमिक हन, अते ताकीद करते हैं कि इंसान ए जिज्ञासु ए सीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा हो दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं, कहते हैं

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी च आखते हैं कि जो साधुओं का संग है वह सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता है। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्होंने ढूंढ सज्जन संत पक्या जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक्ष साधुओं दे नाल अपनी मित्रता पाई है कहिंदे हन ए जिहड़े कच्चे हन इन्होंने ते इत्थे ही छड़ जाना है कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं इस करके साध संगत नालों वड़ा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनु मैं सारे नु सारे नु एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसे नाल नाराज हुन्ने हां, फिर उसनु असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी नु फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जो भी उस परसन नु असी देखते हां, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनु असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए, तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनु मिलांगे देखांगे, तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनु यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनु 10 साल पहला की करता हुंदा सी। उसनु क्रेडिट दो, उसनु शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 सालों के विच कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नु ही देखना है। बाणी दे विच एक साडी जो अवस्था है, साडी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे, जह बिगंग तह जाए। माखी चंदन पर हरे, जह बिगंग तह जाए। जड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंग जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी दे शुभ गुण नू जदों देखते हैं, तो नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहों च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटो। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहिंदे ओ सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत, कहिंदे मैं ये सारे दे सारे फौरन पाड़ सिते, डिले नहीं कीते। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वो कहिंदे जिहड़ी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वो उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं, पहला उसनु सुनो फिर उसका असी अर्थ करांगे।

नाम तेरो आसनो। हे मेरे ठाकुर बैठल वाहिगुरु, जिहड़ा पंडित ने आसन लाया है ना, मैं तेरे नाम का ही आसन बनाया है। नाम तेरो आसनो, मैं उस नाम नु आसन समझना। नाम तेरो उरसा, उरसा कहते ने बड्डी नु जिदे नाल केस रगड़िया जाता है। नाम तेरो उरसा, फिर कहते नाम तेरो केसरो लै छिड़का रहे, कहते वो केसर रगड़ के तेरे उत्ते छिड़का कर दे ना, मैं तेरे उत्ते नाम का ही केसर छिड़क देता है। मैं सब कुछ नाम ही समझे है। अगे भगत जी कमाल की गल कहते हैं।